0: वाह भाई वाह. ओके जी 6122 हेलो.
1: चलो हाँ जी भाई.
0: हाँ जी वीरे किदा
1: चाहिए
0: कोशिश ना करो पर जे हुण थोड़ा बंदा लूप होल जे फिर पिया रहिंदा जे नहीं भुलदा. गलतियां हुई या जो कमियां सीगियां उन्हां याद रखो जरूर
1: रखो जरूर. हां जी
0: चलो थोड़ा दिल टुटिया कदे वैसे
1: मेरा हां जी नॉट डेड वे पर मैं निकल गए लाइफ दो तीन साल निकल गए कुछ होर काम कर चीजा कुछ एड अप हो फैमिली भी ग्रो होंगी है नवे करैक्टर थोड़ी लाइफ च आ तो ऑटोमैटिकली चीजा थोड़ू भुलन लग जा
0: ठीक है
1: थोड़ा टाइम बेसिकली टाइम थोड़ा बाय करना पैंदा
0: या एंड सो डिस्ट्रैक्शंस जरूर लबो.
1: हाँ जी एंड गिव योरसेल्फ अ टाइम एंड एक तुसी कहो कि इंस्टेंट ही मेरा हफ्ते दस दिन दे विच हो जाऊगा. नो इट विल नॉट.
0: ठीक है
1: 6 महीने साल
0: बहुत वधिया जिम है बड़ी कमाल दी वाइब है ते जॉइन करो वर्कआउट देखियो लगदे फिर मेनू तकरीबन हो गए 6-7 महीने जांदे नू मैं एक बार किसी बेंच की वेट नहीं की थी, एक बार किसी स्क्वाट रैक की वेट नहीं की थी, बस जाओ ते हरेक चीज अवेलेबल वाइब बहुत वधिया नाले
1: राजधानी
0: राजधानी राजधानी हो पई है

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
1: ओके, अज ना अखीरला दिन है सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का जो मैसेज सीगा, ते मैसेज ये है कि नेशनल यूथ वीक चल रहा, ते अज नेशनल यूथ वीक का अखीरला दिन है, ते पहली मई तो लैके अज तक चल रहा। फ्री यूथ फोकस्ड इवेंट्स अपने शहर च हो रहे ने, जे 14 साल तो लैके 29 साल तक की उम्र है तो तुसी इन्हां इवेंट्स दे विच शामिल हो सकते हो। उस दे नाल नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਰ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। brampton.ca/youth ਗਾਣਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਡ, ਬਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਣ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਸੋ ਦੋ ਬੋਲ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਹੈ 905-673-3337। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ